हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन्ड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

एलजी ले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ गुड।

रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साँझ पख।